0: ठीक समय तमाम बने जो बाहर जो माता से रहता थी फल नो नियो बोले अफेयर का जो बता साउदी बाकुंडा से रहना पूजा बत्ती ने पिसना
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.